साध कृपाल साधु संगत तवसै जो अपन हो हे दयाल टोहे टहे बहो पवन पिन्ना में सुख नाहे टहले जाम के दूत तहे जो साधु संग समाहे बार बार जाऊं संत सदके नानक पाप विनाशे कद के सलोक ठाक न होती तिन्हो दर जय हो वो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते धन धन पौड़ी।

जो सगल त्याग एक लिपटा ही ठहक ठहक माया संग मुए उआ कै कुशल नकतु हुए ठांड परी संत संग बसया

गुर कै शब्द पछाण, ए अडेरा को शर्म कर कलै, जाका तसू नहीं संग चलै, उआ डेरा की सो मित जानै, जाको दृष्ट पूर्ण भगवानै, डेरा ने चल सच साध संग पाया, नानक ते जन नह डोल आया, श्लोक टाहन लागे तर्म राए, किने न काल्यो बंद, नानक उबरे हर जप हरी, साध संग सन बंद पौड़ी, टड्डा ढूंढत कहो फिरो, ढूंढन या मन माहे, संग तुहारे प्रभ वसै, बन बन कहाँ फेरा है, तेरी टहो साध संग, अहमबुद्ध बिकराल, सुख पावो सहजे बसो, दर्शन देख निहाल, तेरी जामे जम मरै, गर्व जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रहै, हौ हौ आवे जाए, टहत टहत अब टह परे, साध जना सरनाए, दुखे फाहे कटिया, नानक लिए समाए, श्लोक जय साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत, ना हो न तू नह छुट है, निकट न जाई अहो दूत पौड़ी, नाना रणते सीजियै, आत्म जीतै कोई, होमे अनको अन स्यो लर मरै, सो सोबा दू होय, मणि मिटाए जीवत मरै, गुरपूरे उपदेश, मनुआ जीते हर मिलाए,

गई, त्रास मिटै जम पंथ की, जास बसे मन नाओ, गत पावहि मत होए प्रगास, महली पावै ठाओ, ताहु संग न तन चलै, ग्रह जोवन नह राज, संत संग सिमत रहो, इह तुहारे काज। ताता कछु न होई है, जो ताप निवारे आप, प्रतपाले नानक हमें, अपे माई बाप। सलोक थाके बाविद काल ते, तृप्त न तृष्णा लाथ, संच संच साकत मुए, नानक माया ना साथ पौड़ी, थथा थिर को नहीं, काए पसारो पाव, अनक बंच

थैली संचो श्रम करो थाक परोगवार मन के काम न आवई अंते अवसर बार थित पावो गोविंद भजहो संत की सिख ले हो प्रीत करो सद एक स्यो ईआ साचा असने हो कारण करन करावनो सबद एक हाथ जित चित लावो चित तित लग है नानक जंत अनाथ सलोक दस एक निहारे आ सा

पौड़ी, ददा दाता एक है, सबको देवनहार, देंदे तोट ना आवई, अगणत भरे भंडार, दैनहार सद जीवन हारा, मन मूरख

हर हर पूंजी नाम वेसाहा, तीरज जस सोभा तै बनया, हर हर नाम सरवन जय सुनया, गुरमुख जय कट रहे समाई, नानक तह जन मिले वडा मिली वडाई। श्लोक

रण दर गए तो सीजे भाई, जो गुरमुख राम नाम लिवलाई, रहत रहत रह जाए बेकार, गुरपुर कै शब्द आपारा, राते रंग नाम रसमाते, नानक हर गुर कीनी दाते। श्लोक लालच झूठ बिखे ब्याद, या देही मैं बास, हर हर अमृत गुरमुख पिया, नानक सुख निवास। पौड़ी लल्ला लावो

वासुदेव सिम सर्वत्र मैं ऊन न कतहूं उठाए अंतर बाहर संग है नानक काए दोराए पौड़ी वावा वैर न करिया काहू कट कट अंतर ब्रह्म समाहू वास देव जल थल में रव्या गुर प्रसाद विरले ही गव्या बैर विरोध मिटै तै मनती हर कीर्तन गुरमुख जो सुनती वर्ण चिहन सगलह ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता।

सहाय। दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याय है संत अंत लहेंगे मुक्त फाल पावेंगे भगवंत। दोहरा

गुरु सवारी संगत जी बहुत प्यार विच जुड़ बैठे हो, आओ होर गुरु की बख्शिश प्राप्त करिए, रल मिल के गुरसिख माई।

बोलना जी वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय रंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया है कर नाउन दयावे ताए सब थाई होए सहाय।

0: गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
1: गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

प्यार अंदर सच्चाने हो लाया प्रीतम अपने तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाए दर्शन।

मजियो जिसनु तेरी टेक सो सदा सद जीवई बलराम जियो तेरी टेक तुझै ते पाई साचे सिरजनहारा जिस ते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रहन आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुरपुरा नानक सद बलिहारी संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गय कंठ लाए मिले अंतर जामिया सत संतोख वजे वाजे अनहदा चुनकारे सुन पै बिना

का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जे घट बसे हर नाम श्लोक निर्गुण हारे अन्या सो प्रभ सदा संभाल जिनकी अत चीत रख नानक निधि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दिष्टानी जंतु सास वार सिगारिया गर्भ गन में जिने उभारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद प्याओ पर साख सहन मुख प्याओ बैठ को दहन एव निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श लियो तो नानक सिजे जे प्रसाद धार उप सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग सह जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुदाई पवन पाव कमला जय प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साध बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसे त्याग और संग रचना

रतन त्याग कौडी संग रचे सा छोड़ झूठ संग मचे जो शरणा सो अस्थिर कर माने जो होवन सो दूर प्राणे छोड़ जाए तिसका शर्म करे संग साई तिस पर हरे चंदन ले पुतारे धोए करत प्रीत भसम संग होए अंधकूप मैं पतित विकराल नानक काढ़ लियो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बार पेख अंतर मल माया शब्द सुनाई किश करे छपाया बार ज्ञान त्यान इशनान अंतर व्यापे लो सुवान अंतर अग्न बार तन सुहा गढ़ पात्र कैसे तरे था जाके अंतर बसे प्रव्याप नान ते जन सह समात सुनिंदा कैसे मार्ग पावे कर गले ओ निभावे काम बुझारत बुझे डोरा निस्किए तो समझे पूरा कहां

रास जीव पिंड सब तेरी रास। तुम माद पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख नेरे, कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत। सरल समगरी तुमरे सूत्र धारी, तुम ते हो सो आज्ञाकारी, तुमरी गत में तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी, श्रोक दिनार प्रछोड़ के लागे आन सुवाए। नानक कहु न सिजई, बिनावे पत जाए। अष्टपदी दस बस दूले पाछे पावे, एक बस कारण बिगोड़ गवावे। एक भी न दे दस पियर ले, तो मूड़ा को कां करे। जिस ठाकर से नाही चारा, ताको कीजे साध नमस्कारा। जाके मन लगा प्रमीठा, सब सुखता हूँ मन बूटा। जिस जने अपना हुक्म मनाया, सब थोक नानक तिन पाया। अग्न साहो अपनी देरास, खात पीत भरते अंधुलास। अपनी अमान कछ बौर साहो ले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आपी खोवे, बौर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस्ते से आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। उसते चौगुण करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल। अनक पांत माया के हेत, सरपर होवत जानन हेत। बिरकी छाया सो रंग लावे, ओ बिनसे ओ मन बजतावे। ज्योति से सो चालना, लपट रहे ते अंधार। बटाओ से जो लावे ने, ताको हाथ न आवे के। मन हर के नाम की प्रीत, सुखदाई कर कृपा नानक। आप ले लाए मिथ्या, तन तन कुटुंब सवाया। मिथ्या में ममता माया, मिथ्या राजो उन्तन माल। मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हथी अस्वस्त्रा। मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। मिथ्या त्रो मोह अपमान, मिथ्या आपसु पुर कर्त गुमान। आज तेरे भक्त साध की शरण, नान जब जब जीवे हर के चरण। मिथ्या सर्वन पर निंदा सुन है, मिथ्या पर दरु कोई रे। मिथ्या नेत्र पेगद पर तेरे आरूपाद। मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चन पर विकार कुदावे। मिथ्या मन पर लो लुआवे, मिथ्या तन्ने पर उपकारा। मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पे सबल दे। नानकार नाम ले,

सबते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नान जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैं आ ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा संदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी।

ज्ञानी कह के रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम धार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अब त्यागत

नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का भेता ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का वड प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड भागी पाइय ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोज जाय महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए राखर ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी सत जीवे नी मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युग जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सभी उपराध ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार।

मानु की टेक पृथ्वी सब जान देवन को एक कै भगवान जिसके दिए रहे अगाए बो न तिसना लागे आए मारे राखे को आव मानु के कुछ नाई हाथ तिसका कंबू सुखोए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर पर सोए नानक विघ्न लागे कोए उस मन में करन अंकार कर मन मेरे सद व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सा सुहेला कर ले जियो नैनो बेग ठाकर का रंग सा संग बिन से सब संग चरण चलो मार्ग गो बिंद मिटे भाव जपिए हर बिंद कर हर कर्म सरवण हर कथा हर दरगे नानक उजल मथा बड़ पागी ते जन जग माए सदा सदा हर के गुण गाए राम नाम जो करे विचार से तन बंद करी संसार मंतन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक बचाने तुद की ओ सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपना सुझे तिसकी जानो तिसना बुझे सा संग हर हर जिसका है सर्व रोग ते अर्जन रहते अंतन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ में सोई निर्वाण एक ऊपर जे जन की आसा जिसकी कटिए जमकी पासा बार ब्रह्म की जिस मन भूख नान तिसन लागे दू जिसको हर पर मन चितावे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किससे डरे जैसा सा तैसा दिष्टा आय अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सिजिया गुर प्रसाद तस्सा बुझिया जब देखो तस्सा किस मूल नान सो सुकम सोई अस्तूल न है किस जन्मे न किस मरे आपन चलते आप ही करे आवन जावन दृष्ट आनंद दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सकल में आपन जुग दृष्टाप्य थाप आवना सी नाई किस खंड तारण तारियो ब्रह्मांड लख पे पुर प्रताप आप जपाए नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो

के सेवक की निर्मल रीत ठाकर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राखे नंकारा सो सेवक जे दया प्रभु धारे नानक सो सेवक सास सास मारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पात राखे दागी गदमित को न लागे प्रभु के सेवक को ना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा दिस बटाया निक्की कीरी में कल रखे भस्म करे लश्कर कोट लख है जिसका साधन काट दिया तक रख दे करा आत्मान जतन करत बाबा दिसे करता बिरते जात मारे न रखे अब न कोए सब्जियां का रखा सोए काए सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभु अलख बडाणी बार बार बार प्रभु जपिया पिए मंत्र पिया नाम रतन जिन गुरु मुख पाया तिसके जाऊ नाई दिष्टाया

जब कार कृष्ण दृष्टेता बाप तब कहते होता जब धारी आपन सुन समात वह विरोध के संकुमात जाव इसका वर्ण चेन न जाव तब हर सो को किसे व्याप्त जावे अपने आप आप पार ब्रह्म तम हो कहा किस होवत परम आपन खेल या वर्ती जा नान करने हार न दूजा जब होवत पर केवल तनी दम बंद मुख को किस को गनी जावे के हर गम पार तब नर सुर को कौन उतार जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए तब से सख्त कहो डाये जब आप है आप अपनी जोत रहे तब कवन निडार गम कद रहे अपने चल दब करने हार नान ठाकर गम पार अवनासी सुख अपने आसन तय जन मरण कहो कामनासन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस हो जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त के पूछ लेखा जब नार निरंजन गोचर का दे तब कौन छे कौन बंधन बाधे आपने आप ही चल जा नानक आप रूप आप ही ऊपर जा जाय निर्मल पुरख पुरख पद होता तय मन मैल कहो कह धोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अपमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लग्न को कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तय किसे भूख गम तृप्तावे कर्ण करावन करने हार नाने कर देगा ना समाज अपनी शोभा अपन संग बनाए तव कौन माए भाव मित्र सुत भाए जय सर्व कला आपे प्रवीण तय वेद देव का कौ चीन जब अपन आप उधारे तो सघन अवसघन कहा विचारे तय जय अपन ऊंचा अपना अपने राय कौन ठाकर कौन की जय चेरा विष्णु विष्णु समाध नानक अपनी गत जानो आप जय छल छेद भेद समाया हुआ किसे व्याप्त माया आप सुखो आपे आदेश तय गुण का नाई प्रवेश

आपे पहुंचा जय आप रचो परमंजकार तय गुण में कीनो विस्तार पाप हूं भई कहावत को नरको सुरमन छाव दयाल जाल माया जंजाल हमे मोह परम व्यापार दुख सुख माने अपमान प्रकार कियो विख्यान आप खेल आव कर देखे खेल संकोचे तो नानके कैम जय अवगत भक्त तह आप जय बसे बसार संत प्रताप दो पाक आपे धनी उनकी शोभा उनु बनी आपे कौत करे नो जापे रसभोग निर्जो जिस पावे दिस आपन न लावे जिस पावे दिस खेल खिलावे बेसमार था गंध तो ले जो बुला बोते नानक दास बोले श्लोक जी जंद के ठाकर आया पे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दिष्टार अष्टपति आप कदे आप सुनने हार आपे का विस्तार जाति पावे तां सिष्ट पाए अपने भाने ले समाए तुम ते भिन्न नहीं कुछ होए आपन सूत सब जगत परोए जागो प्रभु जी आप जाए सतनाम सो जन पाए सोसमदर्शी तत्का वेता नानक सर्वश्रेष्ठ का जिता जी यंत्र सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोए न मारे सो मुआ जिस मनो मसारे तिसदा जबर कहा को जाए सब सरे एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बार जन साथ गुण निदान व्यंत पार नानक दास दा बलिहार पूर्ण पूर है दयाल सब उपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप यंत्र जामे रहो व्याप प्रत पाले जी अनुभव पाल जो जो रचियो सो तिसे ध्यान जिस पावे तिसे लय मिलाए भक्त करे हर के गुंगाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हर नानक इक जानिया जन लागा हर एक कह नाए तिसकी आस निवृत्ति जाए सेवक को सेवा बनियाए हुकम बूझ परम बदबाई इसते उपर नहीं विचार जाके मर्म से अनंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंदन पूजे गुर के पैरे लोक सुखिये परलोक सुहेले नानक हर पवापे मेले सात संग मिल करो नंद गुण गावो पर परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ दे का करो उदार अमृत वचन हर के गुण गावो प्राण तरण काय है स्वाहो आठ पैर प्रपेखो नेरा मिटे अज्ञान मनसे अंधेरा सुन उपदेश हृदय सावो मनुष्य नानक फल पावो

असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्र नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंतर जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता अदो उर्ध अर्धंग अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछेदि अपेदि अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे अनदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्त निदाने नमस्त्वं निर्नाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृसंग नमो सर्वकृत्संग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्ध निवासी चरपट छंद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रूआल छंद त्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत्र तत्र बराजहि अवतूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाखर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख देश और न पेस जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विसा होय फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हू नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत कौ फिर एक देव पेव ना जा नहीं जय वेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जाने कह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म वर्ण विहीन चक्कर बकर फिरै चत्तर चक मन ही पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जह जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सबै जह थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच स्वयं पहुगड़न भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो भरम रहत अभूत अलख भेस अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्थत एक पुरख बतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंगहीन अपंग अनात्मेक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्वशास्त्र न जा नहीं जय रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवही वह चित मद भार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास आ जान बाहो साहन साहो राजान राजपान आन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग अभा अपंग गत मित अपार गुण गण उदार
मुन गन प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा परनाढ्य अंड अंड बाढ़ चाचरी छंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चत्तर चक्र करता चत्तर चक्र हरता चत्तर चक्र दाने चत्तर चक्र जाने चत्तर चक्र वर्ती चत्तर चक्र भरती चत्तर चक्र पाले चत्तर चक्र काले चत्तर चक्र पासे चत्तर चक्र वासे चत्तर चक्र मान्य चत्तर चक्र दान चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र पृथ्वी स अधिस अदृश अकृश भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आछिज देसै के आपिज भेसै के आगंज करमै के आभंज भरमै के आपिज लोकै के आदित्य सोकै के अवधूत बरनै के विभूत करनै के राजं प्रभाहै के धर्मं तुजा हैं के आशोक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतं कृति हैं के क्षत्रं क्षत्रि हैं के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आद अदेव हैं के आप अपेव हैं के चित्रं विहीनै के एक अधीनै के रोजी रजा कर रही मैं रहा कै के पाक व्याव है के गैबल गैव है के अफबल गुनाह है के साहन साहा के कारण करिंद है के रोजी देहांत है के राज कर हीम है के कर्म करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं कलीम के परमं फहीम के आकल अलाम के साहिब कलाम के हुसनुल वजू हैं तमामुल रुजू हैं हमेशल सलाम सलिख तमदाम गनीमल सिकस्ता गरीबुल परस्ता बिलंदुल मकान जमीन उल जमान तमीजुल तमाम रुजुअल निधान हरीफल अजीम रजायक यकीन अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल नवाज है गनिमल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुपहं सर्वभागे सुसर्वा अनुराग त्रिभुक्त स्वरूप है अछिज है अछूत है किनकं प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है अधिख है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं श्रीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजा है अजा है भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज कर हीम हैं के रोजी देहंद हैं के राज कर हिंद हैं करीमल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं गनिमल खराज हैं गरीबल नवाज हैं हरीफुल सकन हैं हरासल फिकन हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तल नवास हैं अगंजल गनीम हैं रजाय कर हीम हैं समस्तल जुबा हैं के साहिब करा हैं के नरकं प्रणास हैं बहस्तुल नवास हैं के सर्वुल गवन है हमेशल रवन है तमामुल तमीज है समस्तल अजीज है परं परम ईस है समस्तल अदीस है अदेसल अलेख है हमेशल अपेख है
जमीनुल जमा है, विकुल इमा है, क्रीमुल कमाल है, कि जुरत जमाल है, कि अचलंग प्रकाश है, कि अमितो सुबास है, कि अजुब स्वरूप है, कि अमितो विभूत है, कि अमितो पसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है, कि अमितो अपंग है, माध पार छंद तो प्रसाद, मुन मन प्रणाम, गुणगन मुदाम, अरबर अगंज, हर नर प्रपंज, अनगन प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, बर नर अमंड, अनुभव अनास, मुन मन प्रकाश, गुणगन प्रणाम, जलथल मुदाम, अनछिज अंग, आसन अपंग, उपमा अपार, गतमित उदार, जलथल अमंड, दिस विस अपंड, जलथल महंत, दिस विस बेअंत, अनुभव अनास, त्रित तरतु रास, आजान बाहो एक सदाहो, ओ अंकार आद, कथनी अनाद, खल खंड ख्याल, गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम, चित्त चरण नाम, अनछिज गात, अजिज न बात, अनचंज गात, अनरंज बात, अनटुट पंडार, अनठट अपार, आडीठ धर्म अत टीठ कर्म, अनब्रण अनंत दाता महंत, हर बोल मना छंद त्व प्रसाद, करनाल है, अरकाल है, खलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कलकारण है, सर्ब उबारण है, तृत के तरण है, जग के करण है, मनमान्य है, जग जान्य है, सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्व पास है, सर्वनाश है, करुणा कर है, विषोम पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड स है, खलखंड स है, परते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, धरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अजबा कृत है, अमृता मृत है, नर नायक है, खलकायक है, विश्वम पर है, करुणालय है, नृप नायक है, सर्व पायक है, पव पंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राजसंग तामसंग सांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद, अजय अलय अपै अभय अपू अजू अनास अकास अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नारागे नारंगे नारूपे नारेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे निरकामं विपूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासे सुतर्मं विपूते सदा सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासे करिमुल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करिमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पव सुपं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपूते दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतह श्री मुखवाक पातशाही दसवे त्व प्रसाद सवैये श्रावग शुद्ध समूह सिदान के देख फिरो घर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखिए तो प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हो ते एक रति बिन एक रत्ति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत सीस न जात बिचारे एते पए तो कहा पए भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे
जीत फेरा सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गोल गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गना नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिना अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत धार सब सो बिचार हजार क देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेख शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह साज सनाह दुरजान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अबिचार है सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचिक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत पविख पवान जपेंगे जीव जिते जल मै थल मै पल ही पल मै सब थाप थपेंगे पुन परतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सतर सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराधब जौन त्रलोक कौ राज करेंगे कोट स्नान गजा दिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है पगते नर फेर ना देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को शीस निवायो को

श्री भगवान को भेद न पायो, को बतान को पूजत है पास, को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दे मुहे बचाव हो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिये, सब बैरन कौ आज संगरिये, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है, आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रासन वरिय, हूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जो करी हो रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरे चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी हो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै, जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचार, तुम सब ही ते रह।

अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव ना पावत बेदा। ताको कृपाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चिन्हत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उतपुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा वै बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सिगरी सृष्ट दिखाय चंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रणकाता। जे अस तुज तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को इक बार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिसट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध करमो सब होई, दुष्ट छाह छुए सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं सरन तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाये, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। कृपा करे हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छै करता। श्री असतुज जब पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख ना तिसै व्यापत कोई। अडिल सुनै गुंग जो याहे सुरस ना पावई। सुनै मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट ना तिन नरके रह। हो जो याकी एक बार चौपई को कह। चौपई संबत सत्रह सहस पणिजै, अर्ध सहस फुन तीन कहिजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा।

अनेक कह मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक ना जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहयो सब तोहे बखान्यो। दोहरा

सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यो मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरा, घरता तेरा सब किछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनका

तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै बज हो क्या करे विचारिया। तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया। एस नौ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया। कह नानक लिवै बज हो क्या करे विचारिया। आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदर हो जिनका मोह तुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया। कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू देह सोई जन पावै, पावै ता सो जन देह जिसनो होर क्या करे विचारिया। एक परम भूले फिर है दह दिस एक नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना पाणा पावै। कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावै। आवहो संत प्यारे ओहो अकथ की करह कहानी। करह कहानी अकथ केरे कित द्वारे पाईऐ। तान मान धन सब सौप गुर कौ हुक्म मन्या पाईऐ। हुक्म मन्यो हो गुरु केरा गाव हो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो हो संत हो कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने न पाया, चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया। एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया। माया ता मोहनी तिने कीते जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विट हो जिन मोह मीठा लाया। कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। एहो कुटुंब तुझे देखदा चलै नाही तेरा नाले। साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइयै। ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइयै। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तू जान हे। जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाण है। आख है ता विख है सब तू है जिन जगत उपाया। कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा किन्नी सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाय एक वेख परसन आया। लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुरते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता हकेरी। बिखम मार्ग चलना

जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी कना दसवा द्वार दिखाया तह अनेक रूप नव नव निध तिसदा अंत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया एहो साचा सोहिला साचै कर गाव हो गाव हो ता सोहिला कर साचै जिथै सदा सच त्याव हे सचो त्याव है जा तुद भाव है गुरमुख जिना बुझाव हे एहो सच सबना का खसम है जिस बख्से सो जन पाव हे कह नानक सच सोहिला सचै कर गाव हे अनद सुनो वड भागी ओहो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया।

पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुखो टल गुर सेविया अहनस सहज सुपाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दे नूर अरसहो कुरसहो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया।

ब्रह्म ब्रह्म मिलया कोई ना साकै भिन्न कर बलराम जियो बिसम पेखै बिसम सुनिया बिसमाद नदरी आया जल थल महियल पूर्ण स्वामी घट घट रहया समाया जिस ते उपजया।

प्रसन्न होके गुरु ने अपने चरण कमलों का आसरा दे दिता, अपनी टेक बख्शिश कर दिती है। तुस कह बलराम जियो, उस गुरु तो भाई बलहार जाइए, कुर्बान जाइए, जिन्ना ने कृपा करके शब्द की टेक दे दिती है। गुरपुर है पूरी कीनी बख्श अपनी कर दीनी है, गुरु की टेक है, गुरु की वड्याई है, गुरु तो बलहार जाइए। हे गरीब निवाज, संसार वाले झात मारीए, किन्ना बादशाह वड्डे तो वड्डा शहनशाह होवे पर उहदे घर सारियां चीजां नहीं हुंदियां। जे जिन्नियां मर्जी पदार्थ वस्तुआं होण, डर जरूर बणिया रहिंदा किते घटदियां घट ही ना जाण, पर सतगुरु जी तुहाडा ऐसा भंडारा जे तुहाडे घर विच सारी पदार्थ ने ते कदे घटदे ही नहीं है। और जो जो जीव आके मंगदे ने सो सो तुसीं दिंदे हो। अगले बोल होर बड़े प्यारे ने।

मेरा पिता बाबुल पिता मेरा मालक स्वामी वड़ समर्था इन्नी वड़ी समर्था दा मालक है ना खिन मैं नीच कीट को राज इन्नी वड़ी समर्था एक क्षण दे विच गरीबां नूं नवाज दिंदा राज भाग दे दिंदा है खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज इन्ना वड़ा समर्था छिन विच साहब जी दे अमृत बच्चा ने किन्नी कु समर्था है सीहां बाजां चरगां कुहियां ये सारे मास खाण वाले ने पर इन्ना वड़ा समर्था वाला इन्ना खवाले कहा काहो खाण तना मास खवाले एहे चलाए रहा नदियां विच टिब्बे दखाले थली करिया सगाह कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सोह एक शेन विच खाक बनाउण वाला है ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਰਾ ਭਈ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਇਹ

नानक गरीब गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सोत बिष्टा का जंत आपस को करवंत कहावे जन मरे बो जोन परमावे धन भूम का जो करे गमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानकी हा मुक्ता गे सुख पावे तनवंता हुई कर गरबावे तृण समानक संग न जावे बहु लश्कर मान ऊपर करे आस पल पीतर तांका हुई विनाश सबते आप जने बलवंत खिनमा हुई जाय पसमंत किसे न बदे आप हंकारी धर्म राय तिस करे खवारी गुर प्रसादा का मिटिया अभिमान सो जन नानक दरगाह परवान कोट कर्म करे हउ तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अणक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर अवतारे अणक जतन करे आत्म नहीं दरवै हर दरगाह को कैसे गवे आप सको जो पला कहावे तिसे पलाई निकट न आवे सर्व किरण जा का मन हुए कहो नानक ता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कुछ हुए तब इसको सुख ना ही कोई जब ए जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मां फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नीचल ना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्मराज दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हउ छूटे सहज खटे ला कोठ तावे तृप्त ना आवे माया पाचे पावे अनंग पोग बिखिया के करे ना तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोक नहीं कौ राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्ब सुख होए वडपागे किसे प्राप्त होए करन करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावण करने हारे इस कह हाथ कहां विचार जैसे दिष्ट करे तैसा हुए आपे आप आप प्रभ सोए जो किसकी न सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझे देखे करे बबेके आपे कापे अनेक मरे न बिनसै आवे न जाए नानक सद ही रह समाए आप उपदेसै समझाए आप आपे रचया सब कै साथ आप कीनो अपन विस्तार सब किसी सुकाओ करने हार उस ते पिन कहूं किस हुए थान थन अंतर एक सोए अपने चल तप करने हार कौत करे रंगा पार मन में आप मने अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वखयानी सच सच सत सब कीना कोट मदे किन बिरले चीना पला पला पल तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी सरवण बखयानी पवित्र पवित्र पवित्र पनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन परै सो जने उदरन हारी संत के निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत का दुखन आरजा कटे संत का दुखन जमते नहीं छूटे संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुखन नरकमा पाए संत का दुखन मत हुए मलिन संत का दुखन शोभा तेहीन संत के हते को रखे न कोई संत का दुखन थान प्रस्ट हुए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संसंग निंदक भी तरे संत कै दुखन ते मुख पवे संत कै दुखन काग ज्यों लवे संत कै दुख सर्प ज्यों पाए संत कै दुखन तिरगत ज्यों करमाए संत कै दुखन तृष्णा मै जले संत कै दुखन सब को चले संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीज नचाए संत दुखी कथा को नाही नानक संत पावे ता भी गत पाए संत का निंदक महात ताए संत का निखन टिक न पाए संत का निंदक मां हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजतेहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा वियोग संत के निंदा दुख मैं दुख नानक संत पावे ता उसका पी हुए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डन लागे संत के दुखी को सब ते आगे संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्मे मरे संत के दुखना सुखते टरे संत के दुखी को ना ही ठाऊं नानक संत पावे तां ले मलाई संत का दुखियत बीते टूटे संत का दुखे ते काज न पहुंचे संत का दुखी उद्यान पर माया संत का दुखी उजड़ पाया संत का दुखी अंतर ते थूथा ज्यो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किस नाही आपन बीज आपे ही खाहे
संत के दुखी गवरना राखन हार नानक संत पावै ता ले उबार संत का दुखी यूं बिल लाए ज्यों जल बहून मछली तड़ फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यों पावक इंदर ने त्रापे संत का दुखी छूटे अकेला ज्यों बार तिलखित माही दोहेला संत का दुखी तरम तैरात संत का दुखी सद मिथ्या कैद किरत निंद का तुर ही पया नानक ज्योतिष पावी सोई थिया संत का दुखी बिगड़ उप हुई जाए संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइया संत का दुखी ना मरे ना जीवाइया संत के दुखी की पूजे ना आसा संत का दुखी उठ चले नरासा संत का दुख ना त्रिष्टे कोई जैसे पावी तैसा कोई हुई पया कीर्तना बेटे कोई नानक जाने साचा सुई सब कर तिसके ओ करना हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्त करो दिन रात तिसे ते आवो सास ग्रास सब किश वरते तिसका किया जैसा करे तैसा कोथिया अपना खिलाफ करने हार दूसर कौन कहे बिचार जिसनो कृपा करे तिसे आपन नाम दे वडपागी नानक जन सोई सलोक तजो से आनप सुर जन सिमरो हर हरे राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी मन की टेक बिरथी सब जान देवन को एक है भगवान जिसका दिया रहे अकाए बौर न तिशना लागे आए मारे राखे को आप मन कै किसना ही हाथ तिसका हुकम बू सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिगन ना लागे कोए उसत मन में कर निरंकारे कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लै जियो नैनो पेख ठाकुर कर रंग साध संग बिन सह सब संग चरण चल्यो मारग गोबिंद मिटहै पाप जपिया हर बिंद कर हर कर्म सवर्ण हत कथा हर दरगह नानक उजल मथा वडपागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पिछाने इतत के ओ सोजी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिने नरंजन जाने गुर प्रसाद अपने आप सूझै तिसकी जानो तृष्णा बूझै साध संग हर हर जस कहते सर्व रोग त्यो हर जन रहते आनंदन कीर्तन केवल बख्यान ग्रह सतम सोई निर्वाण एक ऊपर जे जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन पूख नानक तिसा न लग है दुख जिसको हर प्रण मन चितावै सो संत सहेला नहीं डलावै जिस प्रभ अपना कृपा करै सो सेवकों किस तै डरै जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत् सब बुझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सुखम सोए अस्तूल ना किस जन्मे ना किस मरे आपन चलता आप ही करे आमन जामन दिष्टान दृष्टि आज्ञाकारी तारी सब सृष्टि आज्ञा तारी सब सृष्टि आपे आप सगल मैं आप अनक जुगत राज थापो थाप अविनाशी नाही किस खंड तारन तारे हो ब्रह्मंड अलखा पे पुरख प्रताप आप जपाए तन नानक जाप जिन प्रभ जाता सु सोभावंत सगल संसार उदरे तन मंत प्रभ के सेवक सगल उदारन प्रभ के सेवक दुख

भगत कर आए। गौर हर हर हर हर भगत मैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम सोइया।

जात उपमा जात ना कही मेरे प्रभु की उपमा जात ना कही ताजे हान आन सरन कही राहो।

ना जाए। हर नाम रसना कहना मल पाप कलमा दहना चढ़नाव संसार बैतरे सागर पार।

0: हर हर अमृत बरख
1: भक्त जना की वर्त नाम
0: संत जना के मन विश्राम
1: का नाम दास की ओट
0: हर के नाम उदरे जन कोट
1: जिस कर

0: जपे जप सोए
1: आप जपाए जपे सो नाओ
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ
1: प्रभु कृपा ते होए प्रगास
0: प्रभु दया ते कमल बिगास
1: सो प्रसन्न वसे मन सो

0: कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्मे जीवे मरे
0: कई कोट बा जानी फिरे
1: कई कोट बैठ ही गाए
0: कई कोट काले थक पाए
1: कई कोट किए तनवंत
0: कई कोट माया मैं चिंत
1: जय जय पाणा दते रखे
0: नानक सब किश प्रभ के हाथे
1: कई कोट पे बैरागी
0: राम नाम संत इनले बलागी
1: कई कोट प्रभु को खोजंते
0: पार ब्रह्म लहंते।

0: मन संतोखा संपत्ति अन्न
1: पूरा गुरु आख्यो जागा मंत्र
0: अमरा देश पेखे होय संत
1: बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस पावे तिस

0: छल छिदर लगत को कीसा।
1: जोत स्वरूपी जोत संग समावे,
0: तै किसे भूख अमन तृप्तावे।
1: करन करावन करने हार,
0: नानक करते का नाई सुमार।
1: अपनी शोभा आपन संग बनाई,
0: तब कमन माए बाप मितर सुत पाई।
1: सर्व कला आपे परवीन,
0: तै वेद कतेब कहां को चीन।
1: अपने आप उर्धर
0: हो सकन।

गुरु प्यारी सात संगत सतगुरां दी पार बख्शिश रहमत दा सदका सुखनी साहब दे पंजाब सतगुरां दे चरणां च बैठ करके गुरु साहब जी बाणी दा आनंद माणिया है। सतगुरु रहमत करन आप सारिआं दी हाजरी दर प्रवान करन, दरों करो नाम दी दात गुरसिखी जीवन बख्शन। जिन्हां जिन्हां परिवारों ने सुखमनी साहब की सेवा की है, सतगुरु रहमत करन जिस आशे नूं मुख रख के सेवा की, ग्रीन वाज मनोकामनावां पूरियां करन, अपने चरणां दी प्रीति बख्शन। सो आओ सब तो पहला दास आप जी दे नाल सारियां छुट्टियां जिन्नियां सी गुजारियां आप जी दी संगत करके, खास करके मतावां बीबियां दा तिल तो धनवादी हाँ। जे कोई भुल चुक हो गई होवे खिमां दा जाचक हाँ। इत्थे ही हुण आपां कीर्तन सरवण करना है, उस तो उपरंत अरदास होवेगी। भुलां चुकने खिमां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

दंडौत बंदनन कबार सर्प कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम आपण तन मन हुए निहाल जा गुर देखा सामने सजन सचा पात साहो सिर साहां दैसा हो जिस पास

प्राप को सिमरहे से तनवंते, प्राप को सिमरहे से पतिवंते, प्राप को सिमरहे से जान परवान, प्राप को सिमरहे से पुरख प्रदान।

संत कृपा ते आनंदन जाग, नानक सिमरन पूरा भाग, प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहुना झूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन निह चले आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बेगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांत न पार। सिमरे सहजन जिन को प्रभ माया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कार भगत प्रगटाए, हर सिमरन लाग बेदु पाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीचों कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर

अनेक बिघन जह आय संगार है अरकान नाम तत्काल उदार है अनेक जोन जन्म मर जाम नाम जप तपावै विश्राम हो मैला मलक

अगन माहे हो मत परान कनक असभ है अवर भूमदान न्यौली कर्म करै भो आसन जैन मार्ग संयमत साधन निमक निमक कार।

अनेक जतन कर तृष्ण त्रापे भेख अनेक अगन नहीं बुझे कोड़ पाप दर गह नहीं सिजे छूटस नाही उपयाल मुहे ब्या पे माया जाल अवर करतूत सगली जम डाने।

जे को अपनी शोभा लोरे सार संग हे हो मैशोर है, जे को जन्म मरण ते डर है, साध जना की सरनी पर है, जस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताक है बाल बल जासा, सगल पुरख में

आपनी गात में तो जान हो आपे आपन संग आप रब राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए। सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म।

जय प्रसाद पी वह शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला जय प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री सांगे साथ बसा दीने हस भाव करन नित रसना तिसे त्यागवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध व्यापे नान काढ़ लियो प्रभ आपे आदंत जो राखन हार तिस ज्यो प्रीत न करै गवार जागी सेवा नव निध पावै तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै

जिसकी बस्त से आज्ञा राख है, प्रभु की आज्ञा मन मत है, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनेक भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिरख की छाया स्यो रंग लावे, ओह बिन सह ओह मन पछतावे। जो दिस सो चालन हार, लपट रहो ते अंध अंधार, बटाऊ सियो जो लावे नेह, ताको हाथ न आवे केह। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई,

जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै जे प्रसाद चुको ना पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभु चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करेह जे प्रसाद आ भूखन पहरीजे मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजे जे प्रसाद असवस सवारी मन तिस प्रभु को कबू ना बेसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राग पुरे प्रभ अपने मना जिन तेरी मान बनत बनाई उठत बैठ सत से त्याई तिसे त्याई जो एक अलख इहा उहा नानक तेरी रख जे प्रसाद करे पुन बोदान मन हट पैर कर दिसका ध्यान।

जय प्रसाद तेरी निकी जात, स्वप्रभ सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत रह, गुर प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुनह करन नाद, जय प्रसाद पेखे बिस्माद। जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे बसना। जय प्रसाद हस्त कर चलहे, जय प्रसाद संपूर्ण फल हे। जय प्रसाद परम गत पावहे, जय प्रसाद सुख सहज समावहे। ऐसा प्रभ त्याग अवरकत लाग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल ना मनो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ताको जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे। जय प्रसाद तू पाव है साच, रे मन मेरे तू तास्यो राच। जय प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सुहार गुण गाओ।

अगम गाद भार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुखता होए सुनमीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी सारक संग खुजल होत साध संग मल सगली खोत सारक संग मटे अभिमान सारक संग प्रगटे सो ज्ञान सारक संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत निबेरा सारक संग पाए नाम रतन सारक संग एक ऊपर जतन सार की महिमा बरने कौन परानी नानक सार की सुबा प्रभ महे समानी सारक संग अगोचर मिले सारक संग सदा पर फुल्ले सारक संग आवह पस पंचा सार संग अमृत रस पुंचा सार संग होए साप की रेन सारक संग मनोहर बैन सारक संग न कत हूं तावै सार संग स्थित मन पावै सारक संग माया ते भिन्न सार संग नानक।

ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक जो पावक का सहज सुभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए परगास, जैसे तारू परे आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही बमान। ब्रह्म ज्ञानी उचते उचा, मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जन प्रभ आव करे। ब्रह्म ज्ञानी सकल की रीना आत्म रास, ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म

ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी से माहा, ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार माहा, ब्रह्म ज्ञानी क्या ना ही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लेता आवत बंदा।

ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बाल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।

ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाखियर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मैत कौन बरगान, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जानै।

ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार।

कई कोट पाताल के वासी, कई कोट जन्मे कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीव है मरे, कई कोट बोजोनी फरे, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट की अतनवंत, कई कोट माया में चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक साहब किस प्राप्त कह हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग दिन दिवलागी, कई कोट प्रभु को खो जानते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलियो प्रभु विनाश, कई कोट मागे सत्संग, पार ब्रह्म दिन लागा रंग, जिनको है आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्थार, कई बार पसरे पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने वो भांत, प्रभ ते प्रभ माय समात, ताकंत न जाना कोई आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवता तम प्रगास, कई कोट तात के बेते, सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीव है, अमर भय सद हद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रस सुख सहज समाव है, अपने जन को सास सास मारे, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहारण, जल थल मही अल सोए, अष्टपदी करण करावन करन जोग, ज्योतिष भावै सोई होग, खिन मै थाप उथा पनहारा, अंत नहीं किस पारा वारा, हुक्मे धारा धार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे उच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर देखे अपनी वड़े आई, नानक साहब मैं रहया समाई, प्रभ भावै मानुख गत पावै, प्रभ भावै तब पाथर त्रावै, प्रभ भावै बिन सास से राखै, प्रभ भावै तहर गुण पाखै, प्रभ भावै तब पतत उधारै, आप करै अपन बीचारै, दोहां सिरिया का आप स्वामी, खेलै भिक्षै अंतर जामी, जो भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानुख ते क्या होए आवे, ज्योतिष भावै सोई करावे, इसके हाथ होए ता साब किछ दे, ज्योतिष भावै सोई करे, अनजानत भिख्या मैं रचै, जे जानत आपन आप बचै, पर मैं भूला दह दिस्तावै, निमख माहे चार कुंड फिरे आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन ना मिले, खिन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाग अदृष्ट कशु न आवै, तिस तत्काल दह दिस प्रकट आवै, जाको अपनी करै बखसीस, ताका लेखा नांगन जगदीश, जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास।